0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है।

पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दृश्य नुकजागो हिनी साजागो जों तुमुं थिमानी आचेमानी फासिंग नाहर कहेंगे तीनी हाई सारन मुंगनां भारतनी तके मोसाना गरों बलीवुडनी डिम्पल कापाडिया आचायो अब 1957 ख्रीष्ट बिसि तीनी हाई सालन 1975 ख्रीष्ट बिसिबो हाइन हाई ते खरकसा लुकुबाय हामजाकनाय मुंगनां मोसाना गरों तकेनी मोसाना गरों शिल्पा शेट्टी बबो आसायो मारकिजिं दाखुबुखु तीनी हाई साल अब वर्ल्ड उसेन डे दैज्लां भाग्य मोथांगी तनिनाय असाल हिनीबो पालाय जागै दङ 8 तारिख जून तीनी हाई साल अब हायुं ब्रेन ट्यूमार साल हिनीबो पालाय जाग दङ किरिमा सिनचा ब्यान बाय रुप भाग्य जों चालाय दंनाय अबरंनो सिरिना बागिन असाल पालाय जागै दङ मारा किसी ताको बखु जो कैलेंडर न फिले नहीं खाएंगे कहाँ खाए आओ तीन साल ओ हायुं तेजलंग साल वर्ल्ड ओशन डे हिनी जे पाई जाकनी अब बेलेक नांगक मानी तम हिन बस अब सीना नांग जतन जो सैमानो जो हिनीमानो हाकुंग टंग टंगटुत हाव टंगटुत ओ तेजलंग साल तैकतर साल महासागर साल टाउन बगे पालाने हिने जो सैमानो चीन हायों चीन पृथ्वी अजागाव 70% नई बै कबल जाग अब चीनी बगे बस गाहम अब जो चंगी माया चीन गख्रां ग्रह हिनी हिंजागो बी और दईनी सिमी 50% जेनि बागे नांगमानि अक्सिजेन फायो हिनि साजागो आबो कबि कक आबो साइन्टिस्टनि कक दे कैसा जेनि बागे हामिया फुसफुसनि बागे हामिया जेनि हामा हरमानि नामानि बोखा सबनि बागे हामिया मानै कार्बन डाइअक्साइडनि सिनाम सायमानोजों अ समुद्र अतिज्लां अब 30% गसबैनाव 50% अक्सिजेन समुद्र निसिम मान मानि बागिन अबन हायुंनि फुसफुस एखबा बखा सबम हिनिबो सिनि जागो हायुंनि 100 कोटि बरक बिनि प्रोटीन नांगमानि चाकलम अतिज्लां निसिम मानो मार किचिं दाखबखौ फियाबा बेलाय खलाय जों वान टाइम प्लास्टिक रगाक्रक दियो खिख्लाय मानि बागै दैनि आरग बेवा क्रमजाकनि बागै फियाबा ताबु ओ दै ज्लांबो दै कतरबो बेलाय सातक जाकनि बागै बताबुक त्रिक त्रिक बिनि साखामिया बिनिबो साखामिया उंगै दङ प्लास्टिक दूषण वानसुकियाव बेलाय आरम मानि आबोबाय हायुंगो बेलाय खे तुंमानि त्रिक त्रिक नुगै दङ थानाय सालनि सालतामनो बेलाय खे तुंमाबाय जों बेलाय खे तुं खालामाबाय दङ इमानजा जतन बेलेखे वाना लेखा अमा हाखे तुंखे भाइके जानाय होनो उत्तर भारतक बेलेखे तुंमानि बागै बरक बो गोबां मोनो थैका आबोनि बागैनो अ समुद्र रक्षा खालायनानै अ हायों उसेन साल दैज्लां साल पालायमानि बिसिंथै बररक वान टाइम प्लास्टिक र खिबिया दैयो सिद्रा मानि खिबिया अबरकनो जों जतन खासिना नांगौ आसुग जरा खोनाबायखा लाइ थांनाय बिसिरगो दिनै दैसालाव तामताम पाथिबाय थांगा तिनि स्थित साल टाउनि बागै नांगौ मानि आबरक

आशिक जरा जिन खाना लगा दिन ही निकाग्रो तो लाइ थंग जग लाइ बो मने कोग्रो आओ ताबो खाना लाये ना दिन ही होग बने को दिन ही होग बने को जिन खाना लाये ना मुई खुमु काई मने रखे को जिन दिन ही मुई खुमु निको खाना लाये ना नहीं मगे जिन जब मुई खुमु चास खाई मने आबो आओ जिन खाना वो आगे वो तो कबांग मा मुई खुमु रोक जिन চাইমানো তাই চিনি চুচু আসনি খুগো খালায় মুই খুমু খলব খলব খলব ফিয়াবা আ সাল রক তাবো যাই মানামো জমখানো মানলিয়া তামনি

0: আশিক জোড়া সচিন্দ্র দেবর্মণে খুক্তি রিসাব জাগ রিসাব মঙ্খানা বাইখা আকাশবাণী আগরতলা অর্ণ পাইকা চিনি তিনি ফগ্নি ককবর আওয়াই পান্ধা হায়নি খরা তাই কিসা জরানি ওলন খানাবায়ন দিল্লি কেন্দ্র নি আওয়াইং যা সংস্কৃত তাই ওল হিন্দি বাই ককদমা
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम् विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम् डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत् लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चंडीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मंडल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने द्वितः सायं सपाद पञ्चवादन पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थं अद्य राष्ट्रीय

0: स्वास्थ्यप्राधिकरणं पश्चिमबङ्गालसर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तरराज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीययात्रायै यूरोपीयसङ्घस्य उच्चस्तरीयप्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटीनगरम् आगमिष्यति। यूरोपीयसङ्घस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोपदेशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तनप्रबन्धनव्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीयमल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे।

0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी आगरतला।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
3: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ।

0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे।

0: खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला
2: हाँ
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
2: हाँ हाँ,
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
1: अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई
1: हा?
2: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल, चल।
2: हाँ,
1: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: हाँ, ठीक है,
1: चल,
2: ठीक है,
1: चल,
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: अच्छा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नवयुवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया।

0: इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
2: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
2: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
2: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: বিজ্ঞাপন দাতা আয়োজিত অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হলো। আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন বাংলা ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রথম গানখানি শুনুন প্রেম জোয়ারে ছায়াছবি থেকে। দ্বৈতকণ্ঠে গানখানি গেয়েছেন শিল্পী অমিত কুমার এবং সাধনা সরগম।

0: बार हिसाब नाइबा बहनी नगर सामू खाइनानी नग नुखुंग सामू खाइनानी हिन्नी तो बेसि तो ना जागो रायरग न तो इनके अमो डोमेस्टिक नि प्लस उजे तब चामानी दुकान रग फान सामू रग खाइमानी लामा गानी दुकान रग सामू खाइमानी अमते सामू रग आ टाइम के रेस्ट्रिकशन रेजाखा नेक्स्ट जेफ्रो एमेंडमेंट उंफ्रो पुला निवो तो आम देहे कफ्रो हंगा तो जस्ट टाइम रक कम खाई रेजाक नहीं कैसे गुस जगह सामू खाई मान बरक बरक ने जो केंजारेस कहै आम दिए खाई मानो कितु नेक्स्ट एमेंडमेंट हमको सजाखा जहाँ डोमेस्टिक हेल्पर फानो माहै जामान दुकान दग सामू खाने बरक नब रेस्ट्रिकशन रेजाखा था एमने नर्मेली तो जो थे चाइल्ड लेबर मैक्सिमम आहाय सामूंग ना जागो तबराम आम तीरक दुकान रग मानी रग सुनानी ती रग ना जागो ता हमको आम रग न नेक्स्ट दिस एमेंडमेंट खाई जाखा था
1: नाउ मांगल
0: माहाय डोमेस्टिक सामू जे हेल्पर रग मान चौद बसर जोरानी ता गा जगह कैसा अब दंग तेसा एमेंडमेंट खा अब जब दे 2016 रग तेसा एमेंडमेंट खा आफ्रोगे तेसा दंग स्ट्रिक्टलि नफ्रोगे साजाखा जे चौद बसर जोरार सामूंग नाय मिया ता कामू खाई मिया हाब ना जगह दुईटा एक्सेपन दंग तेसा बरंग कैसा हे तबराम दे फैमिली नो हेल्प खाइनानी ता जस्ट नगनी फैमिली नो हेल्प खाइनानी के बजन बिना स्कूल रग टाइम पाए फ्री टंग्रबा नब तबरगनी फैमिली नि दुकान फान टंखा बिजनेस टंखा गाजा गिजे मिजा ब फैमिली नु चुबाई मानो आम हंगा जे पेरेंट्स रग न थी मान पानिशमेंट दिजाक नहीं आमते ता जस्ट नगनी सामू खाइद्रब से मिसब हेल्प खाने बगैता कैसे जो तब नुगो चाइल्ड आर्टिस्ट रग चाइल्ड आर्टिस्ट बो रमजा गया चाइल्ड लेबर रमजा गया बरग चाइल्ड आर्टिस्ट रग जम जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पोर्ट्स और रग तो जेरा रग सामू खाइमानी बा मान बरग पारफर्म खाइमान अमर रंग चाइल्ड लेबर रमजा गया मैंने ओ एमेंडमेंट हंगा आर दुईटा पॉइंटा तब फैमिली ने हेल्प खाइमानी फैमिली ने हेल्प खाई नब आम तीन नांगना जो बी नॉर्मल जो लाइफ बी पढ़ना थाना डिस्टर्ब इंगाता अब
1: बक्सा बक्सा तो नक नि सामू खाने हनसे स्कूल रखा गया खाई जाब आब खाई जाखा अब चाय रमजा ना
0: आम हंगे और जे साजा मानी हंगे तो नि फ्री टाइम से फ्री टाइम बी स्कूल टाइम रख पाई से ब हेल्प खाई नक रग नुबा मानी अब नीमसी रमजा
1: तब नुगो नक रगे सामू खाने बरक तुबखा हंगे आधार कार्ड रग जमा रदी हेलो पुलिस स्टेशन रग ब सौई तनानी रग नांगो बक्सा रेजिस्टर रग खाई लो अर्गानाइजेशन रग अंखरमानी रग नुगो सिटी कतर कतर रग जे सामू खाई रग गाबन बाकी बरंग मूसा खामिया खाने हिंगा अब कैरंग मकलो रमजागो हाई हिनेता के अब बुसक जरा सामू खाई दौ अब हाई के जे अर्गानाइजेशन सामू खाने रोग जे अर्गानाइजेशन खाई दौ मानी प्रोटेक्शन बाकी
0: बरंग मेन जे चाइल्ड लेबर डायरेक्ट रेसपन्सिबल तो सामने मिनिस्ट्री अफ लेबर एंड एमप्लयमेंट जेटा बरगनी डिपार्टमेंट नब नायो हिंगे जो तो स्टेट न डिस्ट्रिक्ट वाइज अथोरिटी दंगो जे महाइन नाइने रगता प्लस तबरम दे और डिस्ट्रिक्ट वाइज थे तब लेबर इन्सपेक्टर रग दंग एन जी ओस रग सामू खाइबन तुय हिंगे अम जेफ्रो खाई जागो आफ्रो कई अब जो तो कम्बाइन खाई ना तब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ने अथोरिटी इन्सपेक्टर एन जी ओ रग जो तो मिले हुई नक असामू नायो इनके अब विशिंग तबरम दे साजिंग तो सागा जो मान चौद बसर जोरा बरक तो चेराई इनके तब चौदनी ओ एक ने अंडारते कैसे दंग चौदन से मैं 18 बसर

आसुक जरा बुरी पांदा नुगुल खनाबाइखा आकाशवाणी आगरतला ताबुक खनाबाई न खेरंगबार पांदा खेरंगबार पांदा ओ पैला न खनाबाई दी मोयल शांति कायपिंग खरांगो रचापुं बिनी रचापुं न खनातक जगै कबखरका सागर मारक सिहर कब खुलाय अम्बासानी

सबर सानी बीती जदन यांगले दामर तचिं खरप मानिले खेरप संग च नाइब ओ जदो हापोंगो थांबो हापोंग न लबदे हापोंग माहामे हामतु

पंथर माहे में हम तू अंजलो पंथर छांगबो पंथर लपखैचे पंथर न खिली जागु पंथर सरांगी तंगथु जादु नब मानिले सारते।

0: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय

0: ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে অর্থাৎ 1269 কিলোহার্টজে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রথম শিল্পী নিবেদিতা মজুমদার।

0: by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a six-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना

0: योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार

0: आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत।

0: सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী আগরতলা, শুরু হলো আমাদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে, অর্থাৎ 1,260 কিলোহার্টজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রথমে হিন্দি ও পরে ইংরেজি।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शैसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी।

0: And a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defense Ambassadors Ceremony 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त

वाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हमने थोड़े कम वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं, परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं। और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के

0: जापानीज, स्पेनिश एवं हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषा जो भी सीखना चाहते हैं, तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें देशी और विदेशी सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। जो रामकृष्ण मिशन सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस है, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जाएंगे, वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज और पेरेंट मोटिवेशनल कोर्सेज। सर, हमने जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की स्थापना की है, इसके लिए जो रामकृष्ण मिशन स्कूल के लिए सर जो एक्ट और जो रूल हमने उसके तहत ही सर इसका एक्सटेंशन हमने किया है, उसी रूल के तहत ये स्कूल बनाया गया है। और इसे लॉ डिपार्टमेंट एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट का अनुमोदन लेके राज्य सरकार के कैबिनेट ने भी सर इसका अनुमोदन दिया गया है। मैं सभी का यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और कहा जाता है कि अन्य भाषा अवगत करने के अनेक फायदे होते हैं, जैसे ब्रेन फंक्शन हमारा गतिशील होता है, डायमेंशिया जैसे जो ये है आजार है वो भी उसका ऑनसेट काफी देरी से होता है अगर आप अलग अलग भाषा सीखे। मल्टीटास्किंग भी हम कर सकते हैं कि स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज अनदर, इसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो हमारा प्लान है सर कि अगले 2 महीने रामकृष्ण मिशन के जो सिटी सेंटर है सर उसमें ये कोर्स चालू किया जाए। स्किल डेवलपमेंट मिशन की ओर से हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। शुरुआत में सर हम 100 स्टूडेंट्स का सर बैच हम चालू करेंगे। और जो धलेश्वर में रामकृष्ण मिशन का सर जो लैंड है उसमें सर पूरा फुल फ्लेज्ड सेंटर अगले 2 साल में बनाया जाएगा। उसमें सर 1,000 तक पूरी कैपेसिटी रहेगी, साल में इतने कैंडिडेट हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे।
1: সংবাদ বিচিত্র এখানেই শেষ হলো। সম্পাদনায় আদিত্য দত্ত, গ্রন্থনায় সুমন ভট্টাচার্য, প্রস্তুতি সহায়তায় তাপস দেব।

0: এতক্ষণ শুনলেন আধুনিক গান আকাশবাণী আগরতলা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে সমাচার সন্ধ্যা রিলে করে শোনানো হবে।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण

0: बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल

0: राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए

0: वातावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। আজকের শিল্পী সুব্রত দেবনাথ।